परमपिता की याद में आइए प्रकृति के उन पांच अनुपम उपहारों का आभार माने जो हमारा आधार है। धन्यवाद धरती माँ, जल अग्नि वायु और आकाश, आप पावन हैं, आप संपन्न हैं।

0: ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੌਨਸੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
1: 2026 में कमजोर मानसून के बारे में आप और हम पढ़ भी रहे हैं और ऑफ कोर्स उसे झेल भी रहे हैं। उमस और गर्मी से बेहाल मुझ जैसे दफ्तर जाने वाले लोग ऑफिस की एसी में राहत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में कमजोर मानसून का आम इंसान की जेब और जीवन पर क्या असर पड़ता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत के मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि जून और सितंबर में इस बार बारिश सामान्य से कम होगी। इसके लिए एक बड़ी भूमिका अलनीनो की बताई जा रही है। ये अलनीनो क्या है? अलनीनो वैसे तो एक नेचुरल वेदर पैटर्न है, यानी कि एक मौसमी परिस्थिति जो कि प्राकृतिक रूप से ही पैदा होती है। ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के पूर्वी भाग यानी दक्षिण अमरीका के तटीय भागों में पानी का तापमान बढ़ने की वजह से पैदा होती है। इसकी वजह से मौसम का सामान्य चक्र गड़बड़ा जाता है और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं आती हैं। द यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने पहले ही इसे सुपर अलनीनो बताया है और कहा है कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलनीनो हो सकता है। NOAA ने ये भी कहा है कि वैसे ही पहले से दशकों से इंसानों की गतिविधियों की वजह से धरती गर्म हो रही है और अलनीनो उसमें और इजाफा कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ही माने तो 1 जून से 16 जून के बीच सीजनल बारिश 35% कम हुई। कृषि विभाग ने करीब 10 से 12 राज्यों को इस कमी के चलते होने वाले नुकसान को लेकर आगाह किया। मानसून जो कि भारत की खेती की साइकिल की धुरी है, यहाँ ये समझना जरूरी है कि मानसून का मतलब बारिश नहीं है। मानसून दरअसल एक विंड पैटर्न है। मानसून की हवाएं अपने साथ समुद्र की नमी लेकर आती हैं और बारिश लेकर आती हैं। मानसून का सबसे बड़ा क्षेत्र साउथ एशिया और वेस्ट अफ्रीका है, लेकिन मानसून अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी पर भी असर डालता है। भारत में दो तरह के मानसून आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर तक चलता है और यही भारत का अहम बारिश का मौसम है और भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा की। भारत की कुल बारिश का 75% हिस्सा इसी मानसून से आता है, जो कई अहम फसलों से लेकर पीने के पानी और बिजली उत्पादन में अहम रोल निभाता है। साउथ वेस्ट मानसून के फेड होने के बाद बारी आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। वैसे इसका फैलाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दक्षिण भारत के राज्यों के लिए काफी काम का साबित होता है। ये गेहूं जैसी रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं साउथ वेस्ट मानसून खरीफ की फसल जैसे चावल और गन्ने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की देरी इन फसलों की खेती पर असर डालती है और जाहिर तौर पर ये आगे चलकर फूड सप्लाई से लेकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। फसल कम होगी तो ऑफ कोर्स सप्लाई भी कम होगी और स्कूल में हम सब ने डिमांड और सप्लाई को पढ़ाई है। फसल जिस भी रूप में रसोई में पहुंचती है, चांसेस हैं कि वो महंगे दर पर भी पहुंचती है। यहाँ ये बता दें कि रबी और खरीफ ये दो तरह की फसलें भारत में मुख्य तौर पर होती हैं। खरीफ को मानसून क्रॉप भी कहते हैं, जिसकी बुआई जून में होती है और कटाई आगे के महीनों में। वहीं रबी विंटर क्रॉप मानी जाती है, जिसकी बुआई सर्दियों में होती है। अप्रैल 2026 में द वीक की एक रिपोर्ट में RBI का हवाला देते हुए कहा गया कि खराब मौसम मूलभूत अनाज की कीमतों पर असर डालता है। वो वंचित या हाशिए पर खड़े वर्ग के बच्चों की सेहत पर सीधा असर डालता है, जिनके परिवार की जेब उन्हें पौष्टिक खाने तक पहुँच से रोकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 21 जून की रिपोर्ट है, मॉनसून जिटर्स विल अलनीनो रियली डीरेल इंडियाज इकोनॉमी। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के इन्फ्लेशन के आंकड़ों में खाद्य पदार्थों का 37% हिस्सा होने के कारण सब्जियों और अनाजों की कीमतों में उतार चढ़ाव और मानसून का प्रदर्शन महंगाई दर को प्रभावित करता है। साथ ही ये लेख बताता है कि नुकसान किस तरह दूसरे माध्यमों या चैनलों से भी फैलता है और ऐसे मौसमी प्रभावों की वजह से आमतौर पर ग्राहक महंगे प्रोडक्ट से मुंह मोड़कर सस्ते विकल्पों की तरफ रुख करता है। फिलहाल अंदर रुख करते हैं, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है।
0: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
2: ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ

0: फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
1: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: मुझे बचा लीजिए यहाँ आग लग गई है।
6: करीब 5 घंटे इस इमारत की आग को बुझाने में फायर डिपार्टमेंट के लोगों को लगे हैं।
7: भयावह स्थिति थी, लोग तार पकड़ के नीचे उतर रहे थे।
6: जान गंवाने वाले लोगों के परिजन यहाँ शवों के इंतजार में हैं, उनकी पहचान के इंतजार में है, उसकी शिनाख्त के इंतजार में है।
8: फायर ब्रिगेड आई है कम से कम 40 मिनट बाद। हमारे पड़ोसी ने भी कॉल किया था, उनके घर में भी आग पहुंचने वाली थी। अगर 5 मिनट फायर ब्रिगेड और लेट होती तो ये दोनों बिल्डिंगें भी जल चुकी होती।
6: रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। हम अभी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो हॉस्पिटल भी है, उसकी मॉर्चरी के बाहर खड़े हैं। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की भांजी आज जो लखनऊ के एक इलाके में आग की घटना हुई है उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। एक कहानी कुछ ऐसी है कि अकेला बेटा, उनके पिता पैरालिसिस के मरीज, माँ अकेली हैं, घर में कमाने वाले इकलौते बेटे थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका परिवार अब पूरी तरीके से अकेला है।
9: जिनकी डेथ हुई वो मेरे फ्रेंड थे, वो अलीगंज में उनका ऑफिस था हेड हुबर्स नाम से, वहाँ पे ये आईटी टेक्नीशियन थे। इनकी अभी 8-9 मंथ्स हुआ था इनकी जॉब लगे हुए, घर के इकलौते लड़के थे। जो मदर है वो बेचारी आ नहीं पा रही है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, फादर पैरालाइज है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि मुआवजा मिल जाए उनके घर को, मतलब इतना रहे कि जब अगर वो नहीं है तो कुछ करा जा सके उनके घर वालों।
6: हमने यहाँ

0: लोगों से बात करने की कोशिश की, मॉर्चरी के भीतर भी गए, मॉर्चरी के भीतर का दृश्य बिल्कुल परेशान कर देने वाला था।
1: मेरा नाम प्रभुजोत सिंह है, मेरा बेटा सुखमनी सिंह था, 23 वर्ष उम्र थी उसकी। पिछले 4 साल से वहाँ पे उसने जो है अप्रेंटिस पे शुरू किया था, आज गिविंग आर्टिस्ट में काम कर रहा था। मेरे पास 2:36 पे कॉल आई थी उसकी कि पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई है। तब हम लोग उसी टाइम भागे हैं। बस उसके बाद जो है, जो जब तक हम पहुंचे हैं, रास्ते में हम लोग एम्बुलेंस वगैरह को, इनको सबको कॉल करते गए हैं। उस दौरान जो भी वहां पहुंचे तो 5-6 गाड़ी दमकल की लगी हुई थी, लेकिन जो काम ओवर स्पीड से होना चाहिए था या NDRF या SDRF को पहले आ जाना चाहिए था, तोड़फोड़ होनी चाहिए थी, वो थोड़ा बाद में हुई है। बस सब बच्चे 18 साल से लेके 24, 25, 26, 27 साल के बीच के, समझे, सब वही दम घुटने से मरे हैं। पुलिस ये बता रही है कि बर्न्स उतने नहीं है बॉडी पे। लापरवाही तो मैडम कहीं ना कहीं तो होगी, नहीं तो एक बच्चा खत्म होता, चलो किसी के बच्चे की या उसकी लापरवाही, पूरा अगर ऑफिस खत्म हो जा रहा है इस तरह से, तो ये तो बहुत बड़ा हैजार्ड है।
0: जो अस्पताल की तरफ से हमें जो लिस्ट मिली है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है या जो लोग घायल हैं, उनकी जो संख्या है वो बताती है कि कुल 15 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। इनमें से सभी उत्तर प्रदेश के नहीं थे, कुछ पश्चिम बंगाल के थे, कुछ हरियाणा के थे और एक मध्य प्रदेश के भी। जो घायल लोग हैं उनका इलाज अभी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जब उनका इलाज पूरा होगा तब उनके पक्ष की कहानियां सामने आएंगी कि आखिर आग का मंजर कैसा था और वो किस स्थिति में कैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, हम लखनऊ के अलीगंज में इस वक्त मौजूद हैं। ये एक रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में बीते सोमवार मेरी दाई तरफ खड़ी इस इमारत में आग लग गई और ये इमारत जलकर खाक हो गई। करीब 5 घंटे इस इमारत की आग को बुझाने में फायर डिपार्टमेंट के लोगों को लगे हैं। जब हम सोमवार शाम 4 बजे के तकरीबन यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर सड़क की शुरुआत से ही हमें दमकल की गाड़ियां दिखाई देनी शुरू हो गई। जितनी संख्या दमकल की गाड़ियों की थी, लगभग 1 दर्जन के करीब, उतनी ही संख्या एम्बुलेंस की थी। हम जैसे ही इमारत के दूसरी ओर गए तो हमें नजर आया कि इमारत के एक हिस्से को तोड़कर दमकल कर्मी, पुलिस सभी मिलकर अंदर से जिनकी जान चली गई थी उनके शव निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये घटना सामने आई, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया और उसके बाद इस मामले में SIT की भी जांच गठित करने की बात कही गई है। आग कैसे लगी और इसमें क्या किसी की लापरवाही थी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें एक इस इमारत के मालिक ही है। तारिक खान के साथ प्रेरणा, BBC लखनऊ।
2: सो ये सीगी जी एक लखनऊ की गलबात जी तुम सुनी। इस तों इलावा होर भी कई खबर जिदे च स्पैशली निहंग सिंघां दे नाल जिहड़ी ए कुटमार जिहड़ी होई है, तो उहनूं लै के भी एक खबर जिहड़ी काफ़ी आ रही है। सो दुनिया भर दीआं खबरां तुहानूं पता भी इन्हां प्रोग्रामां दे विच आपां शेयर करदे हां, इनकलूडिंग लोकल खबरां जिहड़ियां हुंदियां ने उहते भी नज़र मारदे हां। ते अज दे प्रोग्राम जिद्दां मैं पहलां भी कहा सीगा वी साडे कोल स्टूडियो दे विच साडे गैसट पहुंचे ने, ते पंधेर साहब ते नाल दी नाल ही गोरा जी, क्योंकि बड़े लंबे समय तो आपां एक दूजे नाल जान पछाण रखते हैं, तो आवाज़ चैक करनी होंदी है कई बार, पता लग जाए भी ठीक है जी, कैमरा तो सैट ही सैट है बट आवाज़ भी जी सैटिंग चलनी चाहिए है। सो आवाज़ की सैटिंग भी हो गई है। तो सब तो पहला पंधेर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी सबरंग रेडियो से, अज के प्रोग्राम च विरासत की गूंज लैके तुसीं पहुंचे हो जी 5 रिवर सोसाइटी ऑफ कैलगरी दे उहदे नाल जी।
3: ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 5 ਰਿਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ
2: ਜੀ ਜੀ,
3: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
3: 5 ਰਿਵਰਸ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
2: ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਹੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਗੂੰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक

0: तो उन्होंने जो है बाकी कम्युनिटी जो उन्होंने इन्वाइट किया था, तो आई वॉज वन ऑफ देम। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2008 में मस्जिद बनी थी जिसका नाम है बैतुन्नूर।
0: बैतुन्नूर जी।
1: ये कनाडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट पर्पस बिल्ट मॉस्क। बड़ी बिल्डिंग्स तो हैं, सेंटर्स भी हैं इससे काफी बड़े हैं, लेकिन बाकायदा मस्जिद के तौर पर जो बनी है वो उस लिहाज से ये बड़ी मस्जिद है
0: माशाल्लाह।
1: वैसे तो कैलगरी में भी, टोरंटो में भी बहुत बड़े बड़े सेंटर्स मरकज हैं, एडमंटन में भी हैं
0: जी।
1: तो ये चूंकि बाकायदा मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एज ए पर्पस।
0: क्या बात माशाल्लाह, बहुत मुबारक।
1: इसमें जिम भी है, डाइनिंग एरिया
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके अंदर बोर्ड रूम भी है, लाइब्रेरी भी है, मीटिंग रूम्स भी हैं, उसमें बुक डिपो भी है, उसमें यू नो अहमदिया मुस्लिम स्कूल भी है सेकंड फ्लोर पे
0: जी।
1: यू नेम इट, इससे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स
0: जी जी।
1: जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त जो कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स थे
0: जी,
1: उन्होंने कम्युनिटी की जरूरत को सामने रखते हुए इसको डिजाइन किया।
0: क्या बात, मैं बहुत,
1: तो इसलिए वो कोई भी चीज कम्प्लीट तो नहीं होती ना मुकम्मल, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर गुंजाइश तो रह जाती है
0: जी।
1: लेकिन ये असल में सिर्फ एक मस्जिद का काम नहीं दे रही इबादत के लिए, लेकिन ये कम्युनिटी सेंटर भी है। मसलन आज इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हुए हैं
0: जी,
1: तो वहाँ पर हमारे जिम में शिया कम्युनिटी जो है वो मुहर्रम से रिलेटेड अपना इवेंट्स कर रहे हैं
0: जी।
1: तो हम दूसरी कम्युनिटीज को भी ये ऑफर करते हैं
0: माशाल्लाह
1: कि वो अपने इवेंट्स, अपने गेट टुगेदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को
0: जी
1: वो करते हैं वहाँ गैदरिंग, जिनके पास प्रॉपर अपनी कोई जगह नहीं है, वी ऑलवेज वेलकम, वी ट्राई टू अकोमोडेट। और वैसे भी अगर मस्जिद के अंदर नहीं तो पार्क में, तो समर में बहुत एक्टिविटी,
0: बहुत एक्टिविटी जी जी।
1: तो जिसका भी इवेंट हो तो उसको पार्किंग लॉट चाहिए होती है
0: जी।
1: तो अभी मुझे नहीं याद पिछले 20 साल में हमने किसी को, 20 साल 2008 में बनी थी, 18 साल कह लें
0: जी,
1: 18 साल में किसी को हमने अभी तक रिफ्यूज नहीं किया
0: माशाल्लाह।
1: क्योंकि मकसद ही यही है इसका, लोगों की सहूलत के लिए, इस्तेमाल के लिए
0: जी,
1: खिदमत के लिए,
0: खिदमत के लिए
1: हमें खुशी होती है। मसलन जब जमात खाने को जरूरत होती है, आपको पता साथ ही जमात खाना भी है
0: जी,
1: तो वो हमारी पार्किंग लॉट यूज करते हैं
0: जी। मुझे
1: पता हमारे पास कोई बड़ा इवेंट हो हम जमात खाने के पार्किंग लॉट में
0: जी जी बिल्कुल जी हाँ जी। अच्छा ये जो है नई नई भाई हमारे बात करें वेस्टवी जमात खाने की, जहाँ पर मैं भी जाता हूँ, हमारे इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का जो जमात खाना है, सो वी डू शेयर ऑफकोर्स आई नो दैट। तो यू नो अब ये जो ये जो जुलाई 1st को जो हो रहा है जन्मदिन हो रहा है, हम जो कनाडा का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उस दिन क्या हो रहा है
1: जी? उस दिन फन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है
0: जी।
1: असल में तो हम एज ए कैनेडियन हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है
0: जी,
1: कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है जहाँ पर हम अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं
0: जी,
1: तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए।
0: ठीक है,
1: सेलिब्रेशन जलाल भाई एक किस्म का ये भी है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए
0: बिल्कुल,
1: जिसने हमें ये इतना जबरदस्त मुल्क दिया
0: जी।
1: तो इस शुक्र करने का एक अंदाज ये भी है कि अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो आप खुशी का इजहार करें
0: जी,
1: सेलिब्रेट करें। जैसे आम जिंदगी में भी कामयाबियां होती हैं तो हम पार्टी थ्रो करते हैं, हंगामा होता है, गिफ्ट देते हैं, तो इसलिए उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए हमने ये 20 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था
0: माशाल्लाह।
1: और उस वक्त मस्जिद अभी बनी नहीं थी, मस्जिद तो 2008 में बनी, तो ये 2006 में पहला इवेंट हुआ था और उसके बाद से हम बाकायदा अल्लाह के फजल से ये इवेंट कर रहे हैं और हर साल इसमें शामिल होने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। उसकी शायद एक वजह यह है कि ये जब हमने ये शुरू किया था तो हमें ये महसूस हो रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है
0: जी,
1: सिटी ऑफ कैलगरी का, उसमें इस लेवल का, इस किस्म का बड़ा प्रोग्राम पहले नहीं होता।
0: नहीं बिल्कुल सही बात है,
1: तो हमने एक नई चीज शुरू की थी तो लोगों को बड़ा ये अच्छा लगा कि उनके घरों के करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे या 5-7 मिनट की ड्राइव पे वो जाके ऐसे बड़े इवेंट में भी शामिल हो सकते हैं
0: जी जी माशाल्लाह।
1: फिर उसमें यूनिकनेस जो है वो ये है कि उसमें फ्री बारबेक्यू सर्व किया जाता है। हो सकता है बड़े इवेंट्स और भी जगहों पे होते होंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ इवेंट वी आर प्रोवाइडिंग
0: जी,
1: इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन अल्बर्टा।
0: माशाल्लाह।
1: और उसमें पिछली दफा हमने 14,000 बर्गर्स सर्व किए।
0: 14,000 माशाल्लाह।
1: दिस टाइम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 20,000। सो ये डिपेंड करता है वेदर पे, मौसम पे।
0: मौसम बिल्कुल,
1: मौसम अच्छा हो तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, अगर बारिश हो या ज्यादा गर्मी हो थोड़े से लोग कम भी आते हैं, क्योंकि हमारा टाइम दोपहर में है, 11 बजे शुरू होगा,
0: 11 बजे
1: और 2 बजे तक बारबेक्यू चलता है। ऑफिशियल

0: charitable organization.
1: Achha.
0: It is an international organization registered in 60 countries.
1: Mm-hmm.
0: कनाडा में भी वो बड़ा एक्टिवली काम करता है
1: अच्छा।
0: और इस कनाडा डे पे उनका बूथ भी होगा
1: अच्छा
0: वो
1: क्या नाम है इनका
0: ह्यूमैनिटी फर्स्ट
1: ह्यूमैनिटी फर्स्ट ओके ईयर ओके
0: इनका बूथ होगा वहाँ पे
1: uh-huh.
0: और ये दूसरी जो हेल्प होती है ना किसी को अगर कोई नया आया उसको सेटल होने के
1: जी,
0: लिए
1: जी, जी, जी.
0: फूड की जरूरत है घर के सामान की जरूरत है तो ये सारे उनको लुक आफ्टर करते हैं
1: क्या बात है जी वेरी गुड आज का जो शो है हमारा उसको स्पॉन्सर क्या है कंट्री स्टोर है इनका कहना है कि इफ यू लुकिंग फॉर एनी कार यू कैन कॉन्टेक्ट देम और यू कैन विजिट द वेबसाइट chtoyota.com इनका फोन नंबर 4032901111 थिंक द जॉइंट कंट्री टोयोटा मोबाइल मोड का स्पेशलिस्ट रूबी नकासिम अली इनका फोन नंबर 4038707069 शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉर्गेज शी इज द वन 4038707069 हमजा बट फ्रॉम द बट क्राइ बैंकेट हॉल फॉर एनी रीजन फॉर एनी वेडिंग और एनी मिनी बर्थडे पार्टी या तो कोई एनिवर्सरी का आपका जो है सेलिब्रेशन हो यू कैन कॉल हमजा भाई एट 5873520094 नसीम ज्वेलर्स अवर गुड फ्रेंड शहजाद मियन साहब की है अगर आपको पाकिस्तान की डिजाइन यहां पर चाहिए कनाडा में कैलगरी में तो आपको जो है दिस इज द ओनली वन 8259875000 फिर आयज बशीर अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट लेंस बनाना हो या तो फिर जो है सनग्लासेस लेने हो यू कैन कॉल अवर गुड फ्रेंड बशीर सोमानी 4037203937 मेरे साथ अभी मौजूद है नईम चौधरी साहब जो कि अहमद मुस्लिम कम्युनिटी से है इनका जो है जुलाई 1st को जो है कैनेडा डे पर इनका जो है कैनेडा डे का सेलिब्रेशन होने जा रहा है एट द प्रेरी विंस पार्क सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक इट्स अ फ्री बारबेक्यू इट्स नॉट ओनली द फूड बट देयर सो मेनी अदर एक्टिविटीज फॉर द किड्स एज वेल एज द फीमेल एज वेल तो अगर आपने फ्री है आई एम श्योर यू आर फ्री सो जस्ट कम ओवर ब्रिंग द होल फैमिली वहां पर आपको अगर जो है वेदर इंशाल्लाह अच्छा ही होगा तो आप जो है अपना पार्क में घूमे फिरे भी प्लस यू कैन एंजॉय द जो है बारबेक्यू प्लस आइसक्रीम भी होगी और अदर एक्टिविटीज एज वेल कुछ और कहना चाहेंगे नहीं भाई
0: जी बिल्कुल इस दफा कुछ इसमें एडिशन हो रहा है
1: जी
0: हमारे जो बूथ लगेंगे जो फूड सर्व करेंगे उसमें हाँ? इंशाल्लाह दशमेश कल्चरल सेंटर का भी एक बूथ होगा जो मुझे लगता है कि वो ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पर वो जो मतलब लस्सी मैंगो लस्सी इस किस्म की चीज उनकी ट्रेडिशनल होती है बड़ी बड़ी लोग एंजॉय करते हैं शायद उसका वो स्टॉल लगाएंगे इसी तरह एक है गुरु नानक फ्री किचन वो भी वहाँ आएंगे और मुझे लगता है कि वो भी आइसक्रीम शायद सर्व करेंगे इसके अलावा जो हमारी जो एजेंसीज हैं कैलगरी पुलिस फायर फाइटर्स पब्लिक लाइब्रेरी पैरामेडिक्स ये अपना अपना एग्जीबिशन लगाएंगे मसलन जो लाइब्रेरी की अपनी एक बस है
1: जी.
0: वो वहां पे लाके
1: अच्छा, पार्क करेंगे नाइस, लोगों के लिए
0: और इसी तरह फायर फाइटर जो है वो अपना जो उनका ट्रक है लोगों की अवेयरनेस के लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए
1: जी, जी.
0: वहां पर लाएंगे जहां पे उनका स्टाफ भी होगा लोगों को बताने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो या पुलिस में अगर किसी ने हायर होना है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पुलिस फोर्स के नुमाइंदे भी वहां पे
1: मिलेंगे नाइस ओके
0: बाकी इसके अलावा इसमें पुलिस चीफ जो है वो खुद भी शामिल हो रही है फायर चीफ भी शामिल हो रहे हैं जो हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग प्रीमियर ऑफ अल्बर्टा मेयर ऑफ कैलगरी अल्बर्टा ऑफिशियल अपोजिशन एनडीपी पार्टी के लीडर वो भी शामिल हो रहे हैं जी जी नैंशी साहब उसके अलावा नैंशी साहब तो एज ए मेयर भी और मेयर बनने से पहले भी इस प्रोग्राम में आते थे
1: जी
0: और अब भी आएंगे उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा हुआ
1: है
0: रिगार्डलेस किस पोजीशन में लेकिन वो जरूर आते
1: जी, जी, जी, जी।
0: इसी तरह फिर और दीगर जो मेंबर पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए और काउंसलर्स वो काफी तादाद में आएंगे और जो मैंने बूथ बताया है ये बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं
1: जी
0: जो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे बूथ सेटअप करेंगे जिसमें स्टैम्पी टोयोटा है या इसी तरह वो फर्नीचर की एक एक जो है
1: बेस्ट बाय
0: फर्नीचर वाले हैं वो अपना लगा रहे हैं
1: जी
0: उसके अलावा कुछ ये जो केयर सर्विसेज हैं एजुकेशन सर्विसेज हैं इनके बूथ भी लगाए जाएंगे और अगर कोई ऐसा आने वाला मेहमान जो पहली दफा वहां शामिल हो रहा है
1: जी
0: तो उनके लिए हमने मास्क टूर का भी अरेंज किया है
1: अच्छा
0: तो पार्क में ही एक काउंटर होगा
1: जी
0: वहां पे आप जाके बताएं कि मैं मास्क देखना चाहता हूं या चाहती हूं वो वॉलंटियर्स आपको असिस्ट करेंगे अंदर जाके मस्जिद दिखाने में और अगर मस्जिद के बारे में या कम्युनिटी के बारे में कुछ पूछना चाहें तो वॉलंटियर्स अवेलेबल
1: माशाल्लाह जो है कुरुस तो आपको और आपकी पूरी टीम को इट्स नॉट इजी जो यहाँ पे 100 लोगों का इवेंट करना मुश्किल है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट जो 20,000 पीपल।
0: जी जी
1: माशा

0: जो है
1: हमारे पास एक बड़ी टीम है, 250 वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और बच्चों को खेलने के लिए अलहदा से इंतजाम है, वहाँ पर जो बाउंसी कैसल वो भी हैं, बच्चे अपनी जगह बिजी होंगे, खवातीन अपनी जगह, मर्द अपनी जगह, तो आपको बहुत सारे दोस्त उस वक्त में मिल जाएंगे जो आम हालात में हमें नहीं मिलते, क्योंकि आपको बंदा यहाँ पे मसरूफ है, वो छुट्टी का दिन है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर नेटवर्किंग, और आप वहाँ पे लोगों को मिले, एंजॉय करें और कनाडा को सेलिब्रेट करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कनाडा इतना प्यारा है माशाल्लाह, हर तरह की हमें आजादी, अभी अभी और क्या, अभी हम और क्या मांगे इनसे।
1: जी दुरुस्त,
0: दुनिया के दूसरे जहाँ पर अपना देखें, जहाँ पे अभी जंग हो रही है, और वो वहां पर, और हम यहाँ पर, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत भी दी, इतना जो है फ्रीडम से हमको रखा है कि हमें जो करना हो, कुछ भी करना हो, वी कैन डू इट हियर इन लाइक इन कनाडा, और क्या चाहिए हमें।
1: जी बिल्कुल, बीइंग ए मुस्लिम्स, हमें तो हमारी तो तालीम है ना
0: जी,
1: होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है,
0: ईमान का हिस्सा,
1: तो हम अपने उस ईमान की अगर प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो जिस वतन में हम रहते हैं उससे मोहब्बत हमारे लिए जरूरी है, उसके साथ वफादारी हमारे लिए जरूरी है, अगर वो अच्छा मुल्क है तो उसके शुक्र अदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर हमें वो याद दिलाता है कि अगर हम इतने अच्छे मुल्क में रह रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ अपनी तरफ से इसमें हिस्सा डालें और इस मुल्क को ज्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यू नो मैं आपके न्यूज दूं, यू नो आई एम श्योर आपको जो है पता होगा कि हमारे जो है जो हमारे जो 50th इमाम जो अपना प्रिंस रहीम आगा खान, ही इज कमिंग टू कैलगरी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इमामत उन्होंने जो संभाली, तो वो के जुलाई में, जुलाई से 23 से 26 उनका वेस्टर्न कनाडा का टूर है, इंक्लूडिंग कैलगरी एंड जो है वैनकूवर, तो लाइक वी डोंट नो द डेट येट क्या होगी, आई एम श्योर कि हम आपके पार्टनर यूज करेंगे बहुत जल्दी।
1: ओह श्योर, एनी टाइम।
0: लेकिन वहां फिर हमारी पूरी जो हमारी कम्युनिटी है पूरी अल्बर्टा की कैलगरी आएगी।
1: जी बिल्कुल,
0: और फिर उनकी जब विजिट होगी तो उनके
1: आपके प्रोग्राम के तवस्त से हम उनको पहले ही खुश आमदेद कहते हैं,
0: शुक्र,
1: अल्लाह करे उनका जो दौरा है वो बाबरकत हो, कामयाब हो,
0: आमीन।
1: यहाँ के जितनी भी इस्माइली कम्युनिटी है, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे हैं, बहुत अमन पसंद लोग हैं,
0: शुक्र,
1: और मेरे इनके सबरे जो आपकी जो लीडिंग टीम है सबके साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुक है। अभी हमने रिसेंटली जो प्रोग्राम किया था सिटी हॉल में, आप तशरीफ लाए थे, वहाँ प्रेसिडेंट जो थी
0: ज़ारा शजानी
1: बहन वो भी आई थी,
0: जी जी जी,
1: तो इंशाल्लाह जब प्रिंस आएंगे तो हम वी विल बी लुकिंग आफ्टर टू सी हिम इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नईम भाई,
1: थैंक यू
0: फिर से जो है अपना कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग 20,000 पीपल, यार ये कोई ओवरनाइट काम नहीं बनता, इट टेक्स मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन।
1: थैंक यू थैंक यू
0: माशाल्लाह, बस अल्लाह आपको और बरकत दे और हिम्मत दे कि आप ऐसे जो है कम्युनिटी काम करते रहे, और अभी इन द फ्यूचर कुछ भी हो आई एम हियर फॉर यू एनीथिंग, कुछ भी हो, लव टू जो है लव टू हैव यू अगेन बैक ऑन द शो हियर।
1: आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया,
0: वेलकम सर,
1: हम इस प्रोग्राम की जानकारी लोगों को दें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी उस दिन वहां तशरीफ लाएंगे
0: इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है हमारा नईम भाई, तो इंशाल्लाह विल सी यू गाइस ऑन July 1st एट प्रेरी विंस पार्क सुबह 11 से 2 बजे तक का। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मेरे पास जो दूसरे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, हमारे जो है जो हमारे हिंदू बहन भाई उनका एक जागरण आ रहा है, तो उसके बारे में अभी हम जो है बात करेंगे एंड जो है गिव यू लॉट्स ऑफ डिटेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सलाम नमस्ते, केएलजी ऑन रेडियो सुसंग 94.7 FM।
2: क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार, ओएसिस स्माइल मेडिकल, सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी, इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन, अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम, फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इको छत हेठ, असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ भी देर शाम तक, ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4096 ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने ता फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो, किसी भी उम्र दियां 2 पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच, तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे, साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन।

0: कि वहां पे हम सारी चेयर्स नहीं लगाते चेयर्स हम लोग सिर्फ सीनियर्स के लिए
1: अच्छा।
0: और जो प्रेग्नेंट है और जो लोग फ्लोर पे नहीं बैठ सकते तो उनके लिए चेयर्स होती हैं बाकी सबके लिए बैठने के लिए फ्लोर पे अरेंजमेंट होता है
1: ठीक है ठीक है तो अभी जैसे किसी को वॉलंटियर बनना हो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कहां हो सकता है कि वो जो
2: नहीं जस्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं मेरे को भी कॉल कर सकते हैं मेरा फोन नंबर है 4039734039 और इशिता सिंगला को भी फोन कर सकते हैं 4037962400 और नहीं अगर कॉल नहीं करनी एट द टाइम कई बार लोगों का टाइम मिल जाता है कि हम वॉलंटियर करना चाहते हैं तो वो 5 o'clock हमें हॉल पे आके मिल सकते हैं
1: nice.
2: तो उनको वहीं पे रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा वॉलंटियर्स के लिए और उनको वॉलंटियर टैग वहीं पे मिल जाएगा
1: ठीक है तो यू नो ये अपना रिकी भाई जो इंडिया में जब भी होती थी ये अपना जागरण वगैरह
2: हाँ जी
1: अब यहाँ पे हम कर मैंने कभी देखी नहीं है
2: जी जी.
1: तो यहाँ पे तो उसमें क्या फर्क होता है कि सेम ही होता है
2: सेम ही ये हम हमारी खुशकिस्मती है कि हम वो जो इंडिया वाला माहौल है ना वही यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं कोशिश करते हैं कि वही उसी टाइम पे चलते रहें उसी टारगेट में चलते रहें जो वहाँ पे एंजॉयमेंट होती है जैसे जैसे वहाँ पे जागरण होता है जैसे वहाँ पे भी ओपन भंडारा होता है यहाँ पे भी ओपन भंडारा होता है सारी रात लंगर चलता है तो गर्म जलेबियां गर्म गर्म पूरी सारा खाना जो भी बनता है सारा मेन्यू तो अच्छा गरम गरम फूड मिलता है तो सभी लोग एंजॉय करते हैं वैसे
0: जैसे लोगों ने बहुत लोग ऐसे होते हैं कि काफी देर से आए होते हैं
1: जी.
0: वो मिस करते हैं उस चीज को लेकिन वो जब अटेंड करते हैं तो उनको वही वाली फीलिंग आती है जैसे वो इंडिया में बैठे होते हैं
1: क्या बात है तो अच्छा माशाल्लाह आपके जो है दो अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं विपिन जी पहले भी आ चुके हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो उनके क्या होगा कि वो कब स्टेज पर आएंगे क्या होगा उनका
2: हाँ जी सो अबाउट 9 to 9:30 वो स्टेज पे आएंगे विपिन सदेवा जी एंड संचारी बोस वैसे क्योंकि ये 2023 में भी आए थे तो लोगों की काफी डिमांड थी इसीलिए ये टीम सेम वापस आ रही है
1: जी.
2: तो लोगों की डिमांड के कारण इसीलिए विपिन जी फिर वापस आ रहे हैं इस बार
1: क्या करने नहीं विपिन जी वन ऑफ द बेस्ट जो पिछले बार जो खैर उनसे मिले थे बहुत मजा आया था
2: हाँ जी हाँ जी
1: आई थिंक उनके उनके जो परफॉर्मेंस हम देखते रहते फेसबुक पर उनका इवेंट्स उनके जो है चलते रहते
2: हाँ जी क्योंकि उनको एक ऊपर वाले की देन है कि मोहम्मद रफी जी जो बहुत बड़े सिंगर हुए हैं आज भी कह लो कि वो ऑल द टाइम उनके गाने कभी भी सुन सकते हो आप लोगों को मारे जाते हैं ना तो उनके गले में मोहम्मद रफी जी की आवाज है
1: बिल्कुल
2: तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है हाँ जी लोगों के द्वारा यार
1: और कुछ ऐड करना चाहेंगी मोनिका जी
0: नहीं बस आप टाइम पे आओ अपने फ्रेंड्स अपने नेबर जितने ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हो उतने ज्यादा लोग आए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें
1: और
2: हाँ
1: ये जो डोर अभी जैसे जो है आपका 5:30 अगर कोई भी आते फ्राइडे नाइट को है पूजा 6 बजे है जो फिर इसका जो भंडारा 7 o'clock फिर जागरण 7 पे तो ये कितने बजे तक चलता है एग्जैक्ट टाइम रफली टाइम
2: हाँ जी हाँ जी ये 1:30 तक तो माता रानी का गुणगान होता है उसके बाद ब्रेक होती है चाय के लिए
1: अच्छा।
2: हाफ एन आवर की ब्रेक होती है उसके बाद माता रानी की कथा शुरू होती है जो 3:30-4 o'clock तक चलती है उसके बाद माता रानी की आरती होती है
0: और 4:30 तक जैसे आरती होके सबको प्रसाद वगैरह बांट के फिर
1: ठीक है अच्छा आप अभी जैसे आपने कहा कि जो है अपना कथा चलती है वो क्या होती है थोड़ा एक्सप्लेन कर दे हमारा
2: हाँ जी
1: मैंने कभी सुनी देखी भी नहीं है
2: वो हाँ
0: कथा ये तारा रानी की कथा है जिससे वो कहते हैं कि इसी की वजह से जगराते उन्हें शुरू हुए थे
1: अच्छा
0: बहुत पुरानी कहानी है जैसे कि पहले रानी होती थी जैसे उनके कथा सुनाते थे तो इसलिए वो तारा रानी की जो कथा ना इसलिए उस कथा की वजह से वो कहते हैं कि अगर कथा नहीं होती तो वो जगराता नहीं गिना जाता
1: अच्छा
0: जगराता पूरा नहीं माना जाता
1: अच्छा,
0: इसीलिए अच्छा। वो एक तरह से स्टोरी है कि कैसे जगराते होने शुरू हुए
1: अच्छा अच्छा हाँ तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत से लोग स्पेशली इसी सुबह तक बैठना ना कई बार कोई बहुत लोग नहीं बैठ सकते लेकिन बहुत से लोग हैं कि उनको पता है कि माता तारानी की कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं है सो इसीलिए सुबह तक हाल फुल रहता है
1: ये क्या बात है
2: हाँ जी लोग बैठे रहते हैं
1: तो इंशाल्लाह जो है माशाल्लाह मुझे तो अभी भी ऑलरेडी इंटरेस्ट हो रहा है
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: और उसमें जो शमा कपूर हमें देख भी नहीं आई एम श्योर कि शिल कम
2: हाँ जी
1: हाँ वो हमेशा
2: बहुत अच्छे डिवोटीज हैं हमारी सपोर्ट करते हैं
1: जी जी जी तो यू नो अभी जो आप माशाल्लाह इतने सालों से कर रहे हैं तो जो है कम्युनिटी का सपोर्ट कैसा आता है ये लाइक यू नो आई एम श्योर दे आर वेटिंग एवरी ईयर
2: हाँ जी
1: कि इस बार क्या होगा
2: बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से जो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारी कम्युनिटी की सपोर्ट का सारे वॉलंटियर्स का और

0: बिजनेस वीर जो हमारी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा इवेंट है, इसको करना इजी नहीं है, क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है, टाइम भी बहुत होता है. सो सारे जितने बिजनेस वीर हमारी हेल्प करते हैं, बिजनेसमैन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से हम कर पाते हैं. सेकेंडली, क्योंकि हर बार हम जो भी सेविंग करते हैं, तो इसको हम, हमारा अंबे सोसाइटी ऑफ कैलगरी का एक मोटिव है कि गिव बैक टू द कम्युनिटी. सो जो भी हमारी सेविंग होती है हम कम्युनिटी में ही लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी को डोनेशंस देते हैं
1: जी.
0: जो ब्राउन बैगिंग सोसाइटी है, एवरी डे मंडे टू थर्सडे जो लोग अपने बच्चों को लंच अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ब्राउन बैगिंग सोसाइटी 8500 बच्चों को एवरी सिंगल डे लंच प्रोवाइड करती है,
1: स्कूल के बच्चों को.
0: स्कूल के बच्चों को बहुत लोगों को नहीं पता. सो ऐसी बहुत सी सोसाइटियां जिनको हेल्प चाहिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी डोनेशन उनको देते हैं. लास्ट ईयर से हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की थी. लास्ट ईयर हमने 4 स्कॉलरशिप दी थी और इस बार हम 6 स्कॉलरशिप दे रहे हैं.
1: क्या बात
0: है. हाँ जी, वो हमारा पैनल बना हुआ है, उन्होंने 6, उनको सारी एप्लीकेशन चली गई थी, तो उन्होंने 6 बच्चे चूज कर लिए हैं. बच्चों को इन्फॉर्मेशन सारी चली गई है और बिटवीन 9 to 9:30 डिपेंडिंग ऑन टाइम पे, वहीं पे हमने जागरण वाले दिन ही बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक दे देने.
1: नाइस नाइस. आज का जो शो है सलाम नमस्ते कैलगरी, इसको स्पॉन्सर किया है कंट्रील स्टोर. इनका फोन नंबर 4034032901111. थिंक टोयोटा, थिंक द जायंट, कंट्रील स्टोर. मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट रूबीना कासम अली, शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक. इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉर्गेज यू कैन कॉल हर 4038707069. हमजा भट्ट फ्रॉम द भट्ट क्राई बैंकेट हॉल, फॉर एनी इवेंट यू कैन कॉल हिम. इनका फोन नंबर 5873520094. नसीम ज्वेलर्स कैलगरी, फॉर द पाकिस्तान डिजाइन और यू कैन से पाकिस्तान गोल्ड डिजाइन इन कैलगरी 8259875000. एंड अगर आपने कोई चश्मे बनवाने, कॉन्टेक्ट लेंस, या तो आपको जो है, अगर आपको जो है सन ग्लास चाहिए, तो यू कैन कॉल बशीर सोमानी एट आईज बाय बशीर 4037203937. रिकी भाई, यू नो लाइक ऑफकोर्स यू नो वी सी के आजकल हर स्पेशल चैरिटी इवेंट में जो है यंगस्टर्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं.
0: हम यूथ को एनकरेज करते हैं और यूथ हमारे साथ बहुत सारा जुड़ना चाहता है, जुड़ रहा है. और आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम में ज्यादा यूथ होगा. हमारे सारे वॉलंटियर्स अभी जिस दिन हमने पोस्टर रिलीज किया था उस दिन आप सोच नहीं सकते कि कितने वॉलंटियर इतने एक्साइटेड थे. हमारा जो इवेंट होता है ना, ये पहले से ही वॉलंटियर इतने एक्साइटेड होते हैं हमारे इवेंट के. तो जब भी वॉलंटियर मीटिंग होती है सबसे पहले सारे यूथ ही पहुंचते हैं वहां पे. तो यूथ बड़े एक्साइटेड हैं. आप देखेंगे वहां पे इवेंट में जितना भी फूड सर्विंग का है वो सारा यूथ ने संभाल रखा है. तो हमें हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ यूथ है वहां पे तो संभालेगा. सारी सिक्योरिटी भी यूथ ने संभाल रखी है, ठीक है. अंदर वाला क्राउड कंट्रोल भी यूथ ने संभाल रखा है. हमें तो वैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि सारा यूथ हमारे हमारी बहुत सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो सेकंडली ये भी है, वो वॉलंटियर्स भी करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए भी वही अप्लाई करते हैं. तो पता है कि बहुत सारे हम जो स्कॉलरशिप देते हैं तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को देते हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर जा
1: रहे हैं. आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? कुछ
2: नहीं, बस मैं तो सबका थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर इतनी बारिश थी तो स्टार्टिंग में तो हम लोग कह लो डर ही गए थे कि पता नहीं कोई आएगा, पहुंचेंगे कि नहीं, इतनी बारिश थी. लेकिन लास्ट ईयर लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने लोग आए, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सुना है कि बारिश होगी पर डर नहीं लग रहा है,
1: क्योंकि
2: पता है कि सभी आएंगे, सभी हम लाइक सपोर्ट करते हैं, सारे वॉलंटियर्स वगैरह सबका बहुत बहुत
1: धन्यवाद. हमारा समर शुरू हो रहा है और बारिश को बारिश होना भी एक बरकत की निशानी है.
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तो वो अच्छे दिन हो तो उसमें कोई वो जो है कोई अपना लोग आजकल उतना करते नहीं है.
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: वो फिर आई जाओ अपना जो इवेंट्स में भी आ जाते हैं इंशाल्लाह. आई एम श्योर कि यहाँ भी आएंगे. और फिर जो विपिन सचदेवा और ये जो है संचारी बोजे, तो वो भी आ रहे हैं इंडिया से, खास इनको बुलाया इसी इवेंट के लिए. और स्पेशली विपिन को जो है हमने बहुत सुने, अपना विपिन सचदेव माशाल्लाह बहुत ही इनकी प्यारी आवाज है. जैसे अपना रिकी भाई कह रहे थे कि ही इज लाइक मोहम्मद रफी साहब. तो आप आइए, इंजॉय कीजिए फॉर द होल इवेंट, फॉर द होल फैमिली.
0: जी
1: अच्छा, कोई जैसे फैमिली आ रही है, बच्चों को ढूंढना वूंढना कोई उसमें कोई कुछ कोई इंस्ट्रक्शन किसी को?
0: नहीं नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं. बस बच्चे, हाँ रश ज्यादा होता है, बच्चे यूजली पेरेंट्स अपने साथ ही रखते हैं. तो बैठने की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है तो बहुत से लोग आके बैठ सकते हैं. तो किसी, चाहे 10 परिवार आए, चाहे 100 परिवार आए, चाहे 1000 परिवार आए,
1: परफेक्ट,
0: वो सबके लिए.

0: जगह है हमारे पास.
1: ठीक है, तो आप कितने कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार?
0: लास्ट ईयर तो 8,000 प्लस थे.
1: 8,000?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो इस बार भी एक्सपेक्टेशन सेम ही है, क्योंकि लास्ट ईयर रेन होने के कारण
1: भी 8,000 थे.
0: तो अभी जैसे मोनिका ने कहा है कि नहीं, अभी डर नहीं लगता, क्योंकि लोगों को पता है कि ये एक ये इवेंट है जो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं.
1: जी जी जी जी.
0: क्यों? क्योंकि हम जैसे अभी मैंने बताया कि कम्युनिटी को सपोर्ट देते हैं, वैसे ही लोग हमें पूरी डोनेशंस, पूरी सपोर्ट इसी के थ्रू देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग खुद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते. हमारे जरिए हम कोशिश करते हैं कि हम उनका जरिया बन सके, कि उनकी सपोर्ट लोगों तक पहुंच सके, उनकी डोनेशन सही जगह पे जाए.
1: सही जाए.
0: हाँ जी, हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी डोनेशन सही जगह जा रही है. इसीलिए उन जो स्कॉलरशिप देते हैं वो सबके सामने देते हैं. हाँ जी, जो आपने दिया वो आपके सामने ही दिया,
1: सामने
0: क्यों, जो प्रॉमिस किया वही दिया.
1: ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो एमबी सोसाइटी, तो इसका थोड़ा बताएं कि ये अपना अपना कब शुरू हुई, क्या यानी कि क्या क्या और इवेंट्स होते हैं इनके?
0: हाँ जी, अम्बे सोसाइटी का वैसे वार्षिक जागरण ही होता है, ये फोर्थ ईयर है हमारा अम्बे सोसाइटी ऑफ कैलगरी का. सो हम रिलीजियस प्रोग्राम ही करते हैं. इससे पहले हमने रामकथा भी की थी. सो हम वॉलंटियर्स भी करते हैं. आगे भागवत कथा होने जा रही है जुलाई 12 से जुलाई 18 तक. तो उसमें अम्बे सोसाइटी ऑफ कैलगरी वॉलंटियर्स करती है. तो हमारा और जो रथ यात्रा हुई थी अभी डाउनटाउन में,
1: जी
0: उसमें भी अम्बे सोसाइटी ऑफ कैलगरी सारी टीम वॉलंटियर्स करती है. सो हमारा काम सिर्फ वॉलंटियर्स का है, हम वॉलंटियर करते हैं सर.
1: माशाल्लाह.
2: कहीं भी किसी को वॉलंटियर की जरूरत हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है,
1: अगर किसी टाइम हो. और यू नो, आई थिंक अगर आप जो है वॉलंटियर करते हो, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू और राइट प्लेस टू कनेक्ट विद अदर.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: आज इतने जो है नए नए लोग कैलगरी में आ रहे हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो क्या करे क्या नहीं करे, उनको बहुत से लोगों का पता नहीं होता. आई थिंक दिस इज राइट राइट थिंग टू डू.
0: सो कोई भी अगर वॉलंटियर्स भी करना चाहता है और आगे, क्योंकि कई बार जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी को पता नहीं होता कहाँ पे वो कहाँ डोनेट करें. सो वो अम्बे सोसाइटी ऑफ कैलगरी को हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे साथ हमारी टीम बने, हमारे जैसे कहते हैं कि हमारी बाजू बढ़ाएं.
1: yes.
0: तो वो एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते
1: हैं. वॉलंटियर्स जितने हो कम है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, क्योंकि अभी देखिए ना, इतने लोग आने हैं तो हमें वॉलंटियर्स तो डेफिनेटली
1: पूरा जो है आपने कलेक्ट करना सारा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद तो मेजर काम तो सुबह होता है. क्यों? क्योंकि सारी रात के लोग थके होते हैं और सुबह सारा रैपअप भी करना है, उसके लिए भी हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं.
1: जी जी जी जी. और ये राजवीर जो है, ये जो राजवीर बैंकेट हॉल जो कि ये हमारे स्टूडियो से नजदीक है, वेस्टविंड से 3967 52nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट पर है. और अगेन पूजा एट 6 PM और भंडारा 7 PM और फिर जागरण जो है 7 PM. उसके साथ ही खाने के बाद ही शुरू हो जाएगी.
0: खाने के साथ ही शुरू हो जाएगी.
1: और आपको यू कैन आप जो 5:30 पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए ताकि आपको पार्किंग वगैरह मिल जाए. देन यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन एंजॉय.
0: पार्किंग बहुत है और स्पेशली हमने एक टेंट सेपरेट रखा हुआ है जिसमें शूज होंगे, क्योंकि आपको नंगे पैर ज्यादा जरूरी नहीं करना पड़ता. हाँ, जो लोग अपने गाड़ी में उतार सकते हैं शूज, वेल एंड गुड, है ना, तो सबके लिए ठीक हो जाएगा. और नहीं तो टेंट लगा हुआ है हॉल के आ गई, उसमें अपने शूज उतार के, हाँ, क्योंकि हॉल के अंदर शूज नहीं जाएंगे.
1: जी.
0: और सेकंडली सबके लिए फ्री पार्किंग है. पार्किंग बहुत ज्यादा है, अगर टाइम से पहुंचेंगे तो नजदीक मिलेगी, नहीं तो थोड़ी दूर मिलेगी.
1: और फिर चप्पल और आपके जो जूते को जो है उसको उतार के जाता, अच्छा था कि आपकी गाड़ी में सेफ ही रहे, ताकि फिर वहां पर आई एम श्योर 8,000-5,000 लोग होंगे एट ए टाइम.
0: हाँ जी,
1: तो बहुत से उसके जो आप
0: ढूंढने नहीं पड़ते हैं.
1: और स्पेशली वो तो इशिता तो अपने जूते ढूंढने में लगी होगी. आई नो.
0: नहीं, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि गाड़ी में उतारे. और स्पेशली जो राजवीर मैंगोड हॉल के फ्रंट की पार्किंग है, हाँ? वो हमने सिर्फ हैंडीकैप के लिए रखी है.
1: ओ नाइस.
0: सीनियर्स हैंडीकैप वो फ्रंट वाली पार्किंग यूज करेंगे. सो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीनियर्स पहले आए ताकि उनको अपनी पार्किंग स्पॉट इजी मिल जाए, ताकि वो अंदर आके अपनी चेयर्स पे आराम से बैठ सके.
1: चाहे कोई जो है व्हीलचेयर पे हो, वॉकर पे हो, कोई इशू नहीं,
0: कोई इशू नहीं. बिल्कुल, सभी आ सकते हैं. और सीनियर्स के लिए स्पेशली, सीनियर या कोई हैंडीकैप ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उन्होंने सिर्फ किसी भी वॉलंटियर्स को कह देना और उनके साथ जाके उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो सीधा जाके अपना माथा टेक सकते हैं.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये है, दिस फ्राइडे को शाम को 6 बजे पूजा शुरू हो जाएगी भंडारा 7 PM है. और फिर वो जो भंडारा के साथ ही जो जागरण भी शुरू हो जाएगा. तो आप जो 5:30 आप पहुंचे, अभी जैसे जो आपने कह रहे रिकी भाई जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको पार्किंग अच्छी मिलेगी. सीनियर्स के लिए पार्किंग अलग है, तो आप जितना जल्दी पहुंचेंगे तो आपके लिए जो अच्छा होगा, ताकि आपको रश नहीं करना पड़ेगा. देन यू कैन एंजॉय द होल पूजा का जो अपना जागरण का जो सवाब है.
0: बिल्कुल,
1: तो आपको रश ना करना पड़ेगा. ये क्यों नहीं है इधर भागना उधर भागना, एटलीस्ट यू नो कि आपके पास टाइम इनफ है.

0: जो है प्रेयर आप जो अच्छी तरह कर सकें.
1: जी जी.
0: एनीथिंग यू वांट टू ऐड?
1: बस यही कहेंगे कि हम सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं. और लोगों को रिक्वेस्ट है कि जितनी ज्यादा डोनेशन, जितने बिजनेस वीर हमें ज्यादा डोनेशंस देंगे, उतनी ही हम कम्युनिटी में ज्यादा स्कॉलरशिप बढ़ा सकते हैं, सोसाइटीज को हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कहाँ पे डोनेट करें.
0: बिल्कुल.
1: तो हम उनका जरिया बनना चाहते हैं कि हाँ भाई, आप कहीं पे भी डोनेट करना है, लेकिन वो सही जगह डोनेट होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि यहाँ जगह डोनेट हुआ है. सो आप लोग हमें, हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी सपोर्ट की वजह से हम इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. और बस सभी को विनती है कि आप आइए, 6 बजे पूजा स्टार्ट है, 7 बजे भंडारा, 7 बजे जागरण शुरू होगा फ्राइडे के दिन में. तो सभी को रिक्वेस्ट है कि ऑन टाइम पहुंचे ताकि सारे प्रोग्राम का वो आनंद ले सके.
0: बिल्कुल. मोनिका जी, आप कुछ कहेंगी आखिरी वर्ड?
2: मैं बस सबका थैंक्स करना चाहूंगी और यही कि भंडारा सारी रात चलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि बाहर लाइनअप ज्यादा होती है, ये ना सोचें कि हाँ भी बाद में पता नहीं भंडारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर लाइनअप बहुत है तो आप वेट कर सकते हो, आप थोड़ी देर अंदर आके बैठ जाओ, क्योंकि भंडारा तो सारी रात भंडारा चलेगा.
0: यस, आपने जो है रश नहीं करना. हाँ, इसलिए भंडारा जो है पूरी रात चलेगा. तो आई थिंक दैट्स जो है अपना वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू अपना रिकी भाई. थैंक यू सो मच मोनिका जी. Thank you and congratulations to you and your team.
1: Thank
0: for
1: you.
0: This amazing community service jo aap jo karte hain, mashallah. Bas Allah aapko aur himmat de aur apna aap isi tarah karte rahe. We are here for you if you need anything anytime.
1: Thank you.
0: We are here for you. Apna aap kuch bhi ho. To ye tha aaj ka show guys. Jo assalam number se Calgary on radio station 94.7 FM. Inshallah main phir aapko kal milunga for the next edition of Coffee Jalal right here on radio station 94.7 FM 8 PM. To inshallah milenge kal. Apna bahut zyada khayal rakhega. And inshallah, we'll talk soon. Thank you so much for listening and watching. Salaam Namaste Calgary on Radio Sussang 94.7 FM.
3: The time is 9 p.m.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो इमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
1: ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਲ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ
2: ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ
3: ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਐਫਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਐਫਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਲਐਮਆਈਏ ਪਰਮਨੈਂਟ

0: फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाड़ी सेहत साड़ी जिम्मेवारी 587-617-4696
1: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है